0: जुजुलपा थौ नेपाल सम्बन्धिन्छ सौ पी खुद तछला गादी तिया थु रेडियो नेपाल ख अनि नादिस जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। राष्ट्रिय समा प्रविधि जन्य लैङ्गिक हिंसा दिकेता ओ नियन्त्रण आयोग नीति हबोगु संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मति पारित गुदु संसद रेणु चन्दन हवयादिगु प्रविधि छेलाबुला याना लैङ्गिक हिंसा डिकेता नियन्त्रण पामे साथीगु हक्या संरक्षण ओ न्याय पहुँ सुनिश्चित याय मागु नीतिगत कानुनी ओ संस्थागत व्यवस्था याना लिचो लागु कथन छेलाबुला यायागु नापाया संकल्प संकल्प प्रस्ताव सभा या सर्वसम्मति पारित यागु ख। सभाय नाय नारायण प्रसाद दाहाल सभासम्म पारित संकल्प प्रस्ताव छेलाबुला नीति महिला बाल बालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व सामाजिक सुरक्षा मन्त्री नियोवयादिगु प्रतिबद्धता या लिधसा थ्या बिया तगुली छेलाबुला याय त सरकार या त उजा बियादिगुदु नापा वैकल संकल्प प्रस्ताव छेलाबुला झोले जुगु ज्यातेगु विशेष सोला पतिक छेलाबुलाया प्रगति सभा नापा छोया हेता नापा सरकार या त उजा बियादिगुदु थोयान्य सलसन लोङ्गु विशेषण लिस बियादिसे महिला बाल बालिका मन्त्री सीता बादी लैङ्गिक हिंसा दिकेता नियन्त्रण यायता हो लैङ्गिक हिंसा नहङ्केगु नीति अझ उपव्यवस्था नापा एकीकृत कानुन भिङ्किएगु आज अवधारणा पत्र देखाएको धया दिगु दुसा मन्त्री बादी अवधारणा पाउँछ प्रस्तावित कानुने क घामागु मु विषय त डिजिटल हिंसा नियन्त्रण विषय जुगु व राय व परामर्श नीति अर्थ मन्त्रालय छोयागु जानकारी ब्यादिल सलसन संसद डिजिटल माध्यमसँग जुइगु लैङ्गिक हिंसा अपयावना सङ्गु धासे थते कानुनी संस्थागत व्यवस्था या त सरकार ध्यान कोसला दिगु ख। सांसद त्यसा इन्टरनेट स्मार्टफोन पहुँच आपल छेलाबुला जुया चौसाना डिजिटल साक्षरता अभावे मिसाओल मचा ल्यासे तेगु हिंसास हाठ्या अपया चोङ्गुली पाठ्यक्रम दुनिया डिजिटल शिक्षा दुथ्याके मा डिचाके मागुली इना पेना दिगु तुसा सांसद त्यसा फेसबुक थे जागु बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालले दर्ता मजुया अनुसन्धान लिपालाना चोङ्गु नेथाना दिसे सामाजिक सञ्जाल व इन्टरनेट सेवा प्रदायक या त कानुनी दाय राखे हया आपत्तिजनक जोला थथे चिकेगु प्रणाली सुनिश्चित या मागुली बबिया दिल अथेयन राष्ट्रिय सभाया मिगया बैठके सांसद तेगु नेसाली सभ्या दिसे परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल नेपालो भारत दती सरकार निगुदे दतिया प्राविधिक समिति यको लागे सीमाङ्कन विशेष खुचाके धुङ्कुकु जुसाना लिम्पिया धुराली पुले कालापानी सुस्ताथे जागु लागे निगु पक्ष प्रविधि पुच सीमाङ्कन याता लियन धनीगु जानकारी बिया दिगु दुसा मन्त्री खनाला सीमाङ्कन कोचा केगु नीति लियन दुगु लागा तेगु प्रमाण व नक्सा ते नेपालले दुगु धया दिसे प्रमाण लिदंसा निगु दे दतुया कूटनीतिक सलसा भारत नापा दुगु कसौ हङ्के ये कागु कना दिल सांसद विष्णुहरि विश्वकर्मा सीमा हाठ्या विशेष नेनादिगु नेसाली सभ्या दिसे मन्त्री खनाल सीमाङ्कन जुई लियन दुगु लागा बाहेक मेगु लागा सीमा नापी नापाया स्वपु दुगु प्राविधिक समिति ज्या याना चुङ्गु कना दिलसा वेक्ला मुस्ताङ जिल्ला युरेनियम धातु दुगु धैगु हुइना बुइना या नापाङ्गु अध्ययन वा अन्वेषण केङ्गु थासे मेगु अध्ययन व अन्वेषण या ज्या खानी ओ भूगर्भ विभाग पाखेन जुइगु कनादिल सांसद भुवन बहादुर सुनारा नेनादिगु नेसाली सभ्या दिसे मन्त्री खनाल युरेनियम उत्खनन या नीति नेपाली सेना ओ अमेरिकी सेना दथि सम्झौता जुगु धैगु हुइना बुइनाके छुन सत्य त मधु थका त्वातिका दिगु खसा राष्ट्रिय सभाया बैठक थौनी नेसिया छ त अहिले चुनिगु गोसादु प्रतिनिधि सभा कथया शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक 2081 दति सहल अजुगुदु समिति मिग चङ्गु बैठके विधेयक या प्रस्तावना छुन दफा त दति जुगु सहलसँग सांसद अपराध या न्याय निरूपण नीति विश्वसनीय परीक्षण अपराध या वर्गीकरण प्रारम्भिक अध्ययन अनुसन्धान या यता ब्याग्लम ब्याग्लम व्यवस्था प्रस्तावना सहे क घात सुझाव ब्यादिगुदु लिपाङ्गु इले प्रविधिसँग लिदंसाका अपराध उपया चौगुलिन जैविक भौतिक नापा डिजिटल अपराध या परीक्षण नापा अनुसन्धान या त अझ उपसेनाके त सांसद त्यस प्रस्ताव तया दिगु ख सांसद त्यस नमुना सङ्कलन या धुङ्का परीक्षण या नीति ता इलानिसे पी माला चोङ्गु बाध्यता या त नहङ्कुसे जनशक्ति हो ल्याप्टेको व्यवस्था कानुन दुनिहे क घात सुझाव ब्यादिल सहलस विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनम प्राथमिक तह या शिक्षक या दरबन्दी मधुगुली विद्यालय तहसम्म बाध्यात्मक अवस्थासम्म माध्यमिक तह यहाँका चुने मागु कनादिगु ख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक सुङ्गु केन्द्रीय आयोग पदाधिकारी मनोनयन यागुदु नापाङ्गु राष्ट्रिय महाधिवेशन लिपार्मिक केन्द्रीय कार्यालय चोङ्गु नापाङ्गु केन्द्रीय समिति बैठक केन्द्रीय निर्वाचन लेखा व अनुसन्धान आयोग पदाधिकारी मनोनयन यागु ख केन्द्रीय निर्वाचन आयोग लेखा आयोग फुलाङ्गु संरचना विघटन या थ्याया पदाधिकारी या ताहे भाला लल हागु बैठक लिपा महामन्त्री विपिन कुमार आचार्य जानकारी बिया दिगु ख बैठक अनुशासन आयोग प्रमुख के कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका लेखनाथ पौडेल या त मनोनीति आगु दुसा थ्यान्य चमती दुगु केन्द्रीय कार्यालय समीघ घोषाको ज्यासोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नापाङ्गु राष्ट्रिय महाधिवेशन स निर्वाचित दुजत व केन्द्रीय दुजते स पाफया दिगु ख भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आर्थिक द 2083-84 दक्षीय नीति ज्याचो बजेटे तोकियागु इदुने सभासन दुत मबिगु नि सङ्गु स्थानीय त नापा स्पष्टीकरण फङ्गुदु मन्त्रालय पौछोस्याम हिगतिथि गाउँपालिका नगरपालिका या त सोनु दुने बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अवस्था ओलिपा लागु कारण थ्वाथ्वीका धलछोया हेता उजम्बिगु ख स्थानीय तहसँग ओइगु आर्थिक नयाँ बजेट कथ झी 10 गते दुने कार्यपालिका स्वीकृत याना सभासँग दुत बी मालिगु व असार मसान्त दुने पारितिया धुङ्के मागु कानुनी व्यवस्था दु गृह मन्त्रालय लक्षित वर्ग या त ढेवा मायाक न्याका तगु कार्यविधि 2083 कथा सौलेत मबिगु अस्पताल या त कारवाही या त उजम्बिगु दु विपन्न असहाय व्यवहारिसे मनुतेगु नीति अस्पताल ते सम्फ्याना तगु मुक्क सच्छिलासा झिगु प्रतिशत ढेवामायाक वास सेवा याता व्यवस्थित पारदर्शी पहुँचयोग्य देखेता थो कार्यविधि जारी आगु ख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा शैक्षिक क्रियाकलाप याता व्यवस्थित योजनाबद्ध व प्रभावकारी देखेता राष्ट्रिय शैक्षिक पात्र विकास सेना छेलाबुला हगु धागु दु विश्वविद्यालय त्यसमा शैक्षिक गतिविधि याता एकीकृत पात्र या लिधसा यहाँके त आयोग विश्वविद्यालय त नापा समन्वय स राष्ट्रिय शैक्षिक पात्र छ गुख शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मन्त्री स्तरीय कोचिना पाख्या पूर्व स्वीकृत जुया छेलाबुल्या वोगु राष्ट्रिय शैक्षिक पात्र नापाया प्रतिवेदन 2080 या त यी कथा भिङका नुगु राष्ट्रिय शैक्षिक पात्र स्वीकृत यागु नापा मागु छेलाबुल्या नीति फुक्कु विश्वविद्यालय तहसँग परिपत्र यागु कोचिनागु मन्त्रालय जानकारी बिगुदु आयागु सरकार निशोने धुङ्कानी परीक्षा प्रणाली भिङ्केता विश्वविद्यालय शासकीय सुधार डिजिटल सेवा तव्या केगु व सेवा या त लिचो लाइगु कथा देखेगु लोप आपना प्रगति जुगु शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय धागुदु मन्त्रालय प्रवक्ता शिव कुमार साप कोटा या कथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई कक्षा 12 विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षा लिचो नपायागु तुलना याक्न पिथने त सङ्गु धया दिगु दुसा आवनिसे एसई या लिचो परीक्षा सिधे धुङ्गु लक्षी दुने कक्षा 12 या लिचो पिनु दुने व विश्वविद्यालय लिचो खुइ ज्ञानु दुने सार्वजनिक यायगु जुगुदु थो व्यवस्था शासकीय सुधार नापाया सरकार या सच्छी धलकार योजना कथा कार्यान्वयन यानाकु एकलकना दिगु ख अथियाना ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय न सरकार या शासकीय सुधार या सच्छी ज्या धल सन्दुथ्यागु कार्ययोजना त आपना निज्याका चुनागु जानकारी बिगुदु त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष किशोर थापा नियुक्त जुया दिगुदु प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कुलपति बालेन्द्र शाह थापा सेवा आयोग अध्यक्ष संयुक्त एना दिगु ख अथियाना सेवा आयोगका सदस्य संप्राध्यापक डाक्टर रेजिना मास्के नियुक्त जुया दिगुदु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सरकारी जातेके आधिकारिक भो मोबाइल एप छेला स्क्यान मयाता उजम्बिगुदु मन्त्री परिषद कार्यालय मिग परिपत्र यासे मोबाइल स्क्यानिङ एप छबले संवेदनशील गोप्यते मागु सरकारी भोतेको गोपनीयता प्रतिकूल कथा लिचो लाइफ लाइगु पाख्या सचेत याकु से सोङु तहया सरकार या त उजम्बिगु ख सरकारी भोते गु गोपनीयता व सुरक्षित अभिलेखीकरण सुनिश्चित या मागु कार्यालय पति कर्मचारी तेगु भाला जुगु उगु परिपत्र सन्थना तगुदु कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी जलवायु हिउपाय हुने बुलाङ्गु प्राकृतिक विपद वा खाद्य सुरक्षा खे खनेदया चुङ्गो हाथियाता कया अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ध्यान कोसला दिगुदु। संयुक्त राष्ट्र संघीय एसिया प्रशान्त लगाय आर्थिक व सामाजिक आयोग वातावरण तथा विकास समिति थाइल्याण्ड बैंकके चुगु गुकको मन्त्री स्तरीय बैठक याता मिग कघना दिशा वैक्ला हिम नदी त आपला नालावना चोङ्गु झो खनेदया चोङ्गु हिमताल तज्यागु जोखिम उपया चोङ्गु जैविक विविधता छ्याथ्याजागु हाथ्यायाना विश्वया ध्यान कोसला दिगु ख। मन्त्री चौधरी नेपाल थ्याजागु अल्प विकसित भूपरिवेष्टित व पर्वतीय दे तेस फे माला चोङ्गु वातावरण मैत्री व जैविक उत्पादन ते त अन्तर्राष्ट्रिय बजारे सहुलियत पूर्ण प्राथमिकता जागु व अपुगु बजार पहुँच लल ह्या मागुली ब बिया दिगु ख। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ओखलढुङ्गा या चम्पा देवी गाउँपालिका या तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम प्रसाद सुवेदी नापानी म विरुद्ध झिन्च्यागु लाख नेदो ढेबा या भ्रष्टाचार मुद्दा दायर यागुदु। आयोग सुवेदी नापा सिरिज कन्स्ट्रक्सन मध्यपुर ठिमी व ठिमी छ खोप व उगु कम्पनी या सञ्चालक प्रकाश नाछिरिङ राई विरुद्ध आर्थिक दण्ड 2077-78 पलापु खाने पानी योजना ठेक्का सम्झौता रद्द याना हाकुगु सूची सन् तया कोचिगु कारण मछेलेता ज्या मयाता बैङ्क जमानत बापत्या ढेबा हिनामिना याना भ्रष्टाचार यागु दोपसम विशेष अदालत यस मुद्दा दायर यागु आयोगका प्रवक्ता सुरेश नेपानी पिथना दिगु विज्ञप्ति सन्यथना तगुदु। आदेश बुख अमेरिका इरान दथी प्राविधिक सहलह कोचा किगु विशेष प्याची लिस वगुदु वङ्गु जुन 17 सञ्चुगु सहमति छेला बुला प्याची चि किना चोङ्गु कतार न्याथङ्गुदु थोए दते चिना राष्ट्रपति सी जिङपिङ देया रक्षा क्षमता सेना केगु आज सेना आधुनिकीकरण याता आफ्ला थ्याबिगु व सत्तारूढ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी दुनियाँ भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान याता अझ छाकेगु बचाउ पङ्का दिगुदु। कासा जानकारी न्यानाचुङ्गु विश्वकप फुटबल कथा वङ्गु चाने जुगु कासासा इङ्ल्यान्ड अमेरिका व बेल्जियम ट्यागु दुसा थो नापा सुङ्गु पुच विश्वकप थाहा वङ्गु दु फुटबल या लिपाङ्गु 16 दुहा वङ्गु दुसा एटलान्टा स्टेडियम ए वङ्गु चाने जुगु राउन्ड अफ 32 कथा या कासा डिआर कङ्गो या त 1-0 गोल अन्तरम भुकुसे इङ्ल्यान्ड लिपाङ्गु 16 थाहा वङ्गु खसा कङ्गो विश्वकप सम्पिहा वङ्गु दु थथियाना सेनेगल या त 3-2 गोल अन्तरम भुकुसे बेल्जियम ट्यागुदु अथे थौ सुथे जुगु अमेरिका व बोस्निया हर्ज गोबिना दथिया कासा अमेरिका 2-0 गोल अन्तर ट्यागुदु। आ मौसमीय जानकारी थौदेया हिमालय पहाडी लागाया छुन्थासे मलनापा लाप्सा तोया पतिच वा वैगु व चपु कुहा वैगु सम्भावना कुबिगु धागुदु लुम्बिनी प्रदेश तराई लागाया लागान छुन्थासे व बागमती गण्डकी सुदूरपश्चिम प्रदेश तराई लागाया मोथासे मलनापा लाप्सा पतिचा वावैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापु दुसा मधेस कोशी प्रदेश या तराई या छगुनीगु थासे मलनापा लाप्सा तोया पतिचा वावैगु सम्भावना कुबिगु दु बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश या पहाडी लगाया छगुनीगु थासे आफ्ना वावैगु सम्भावना कुबिगु धागु दु वङ्गु नि पेघौसा ये सोनी गया क्वाज नि च्यागु फुटी पेङ्गु डिग्री सेल्सियस तथी लुगु खसा थाउनी ने ये सोनी गया क्वाज नि गुगु निसे सुई छगु डिग्री सेल्सियस तथी लुइगु अनुमान यागु दु थौ सुथे ये स्वनिगले सुथेसिया ज्ञाता इजुया नेगु मिनेटे खने दुगु सूर्य शनिल हेता इजुया झिगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा समाचार निना दिशा शुभ
1: के तपाईँ खोला नदीनाला छेउछाउमा बसोबास गर्नुहुन्छ होसियार बर्सातको समयमा खोला नदीमा पानीको सतह बढेमा तुरुन्तै अग्लो र सुरक्षित स्थानमा जानुहोस्।
2: विपद बाजा बजाएर आउँदैन, त्यसैले बाढी पहिरोको जोखिम हुने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण कागजात र आपतकालीन सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्।
1: हल्लाको पछिना लागि आधिकारिक सूचना र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस्।
2: रेडियो नेपालद्वारा जनहितका लागि
3: पारदर्शिता, जवाबदेहिता र सदाचार प्रवर्धनका लागि जवाबदेहिताका औजारहरू, सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण, गुनासो व्यवस्थापन, सूचना पार्टीको प्रयोग तथा पालना गरौँ।
4: सार्वजनिक निकायमा नागरिकले गरेका गुनासो समयमा नै समाधानको पहल गरौँ। गुनासो व्यवस्थापनलाई जवाफदेही बनाऊ। गुनासो भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा गुनासो अधिकारी कहाँ राखेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुधारमा सहयोग गरौँ।
3: नेपालमा सुशासनको पहल, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्य।
2: धेरै वर्षा भइरहेको बेला पहिरो जान सक्ने भिरालो ठाउँमा नबस्नुहोस्। आफ्नो घर वरिपरिको वातावरण हेर्नुहोस्। सुरक्षित रहन मौसम सम्बन्धी सूचना जानकारी नियमित लिने गर्नुहोस्।
5: समयमै सावधानी अपनाई हानि नोक्सानी हुनबाट जोगिनुहोस्। बाढी पहिरोबाट बचौँ, सुरक्षित नेपाल बनाऊ।
2: रेडियो नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: நம்மள இருக்கோ சரி
1: कस्तो हेरेको लास पनि
2: त होइन अरू त मुख मुख बोल्न थाले त डोरी नै पर्छ कि क्या हो आज।

0: के माटो मिला त के पानी जमे
1: सानोमा ढुङ्गो लयो टाइरा पल्टाई ठुलो ढुङ्गो

यो रेडियो नेपाल हो। अब सम्झना पौडेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। मन्त्री परिषद बैठक आज दिउँसो 2 बजे बस्दैछ। बैठक सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बस्नेछ। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक प्रशासनिक

अब प्रस्तुत गर्दैछौ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू बारे जानकारी।

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। सरकार गोर्खापत्र संस्थानके महाप्रबन्धक पदमे हिक्मत बहादुर रावलके नियुक्त करबाक निर्णय कयलक अछि। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदके कार्यालय सिंहदरबारमे आइ बैसल मन्त्री परिषदके बैठकसँ कैलालीके रावलके गोर्खापत्र संस्थानके महाप्रबन्धक पदमे नियुक्त करबाक निर्णय कयने सरकारके प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलके जानकारी देलनि। बैठकसँ सुरक्षित मुद्रा केन्द्रके कार्यकारी निर्देशक पदमे मोरङके देवराज झुङ्गनाके नियुक्त करबाक निर्णय कयलक अछि। अहिना बैठकसँ नेपाल प्रहरीके 8 प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीके सरुवा करबाक निर्णय कयलक अछि। मन्त्री परिषदके बैठकसँ संलग्न सामुद्रिक कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि अन्तर्गतके राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारसँ बाहरके सामुद्रिक जैविक विविधताके संरक्षण र टिकाउ प्रयोग सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनके लेल संघीय संसदमे पेश करबाक स्वीकृति देबाक निर्णय कयलक अछि। बैठकसँ शिक्षा दशम संशोधन नियमावली 2083 स्वीकृत करबाक निर्णय कयने मन्त्री पोखरेल बतौलनि। राष्ट्रिय सदाचार नीति 2083 राष्ट्रिय विज्ञापन नीति 2083 स्वीकृत करबाक सेहो बैठकसँ निर्णय कयल गेल अछि। मन्त्री परिषद बैठकसँ अर्थ सम्बन्धी किछु नेपाल कानूनके संशोधन आ खारिज करबाक लेल वन विधेयकके संघीय संसदमे पेश करबाक लेल स्वीकृति देलक अछि। एहिनाक विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिके खाली रहल कार्यकारी निर्देशक पदमे धनकुट्टाकी धर्मराज खड्काके नियुक्त करबाक निर्णय कयलक अछि। एहिना बैठकसँ कमैया श्रम सम्बन्धी पहिल संशोधन नियमावली 2083 स्वीकृत करबाक सेहो निर्णय कयल गेल। प्रवक्ता पोखरेल एहिके जानकारी देलनि अछि। प्रतिनिधि सभाके आजुक बैठकसँ सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तेसर संशोधन विधेयक 2083 बहुमतसँ पारित कयलक अछि। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले प्रस्तुत कयने सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तेसर संशोधन विधेयक 2083 सभा बहुमतसँ पारित कयने सभामुख डोल प्रसाद आर्याल घोषणा कयलनि। विधेयक उपरके विचार विमर्शमे उठल विषयमे जवाब दैत अर्थ स्वयं सबके एकैटा लक्ष्य देश के ग्रे लिस्ट से देश के निकालबाक रहल बतौलनि। डाक्टर वागले ग्रे लिस्ट से देश के निकालक लेल निगरानी भ रहल आ संपत्ति शुद्धिकरण जेहन विषय के राजनीतिक अभिष्ट पूरा करबाक लेल दुरुपयोग कयल गेल तऽ देश ग्रे लिस्ट से बाहर निष्कासन नहीं कर सकबाक बतौलनि। विधेयक ऊपर पड़ल संशोधन के प्रस्ताव सब सभा बहुमत से अस्वीकृत कयलक अछि। राष्ट्रसभामे विनियोजन विधेयक 2083 अन्तर्गत 9 मन्त्रालयके विनियोजन शीर्षक उपर समूहीकृत विचार विमर्श भेल अछि। सभाके आजुक बैठकमे युवा श्रम तथा रोजगार सूचना तथा संचार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन शिक्षा तथा खेलकुद स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महिला बालबालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आ सामाजिक सुरक्षा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन आ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक उपर विचार विमर्श भेल छल। विनियोजन शीर्षक उपर के विचार विमर्शमे खर्च कटौती के प्रस्ताव सहित सदस्य समझना देवकोटा आ दलीय आधारमे सदस्य विष्णु देवी पुरा सैनी जयंती राय सोनाम ग्यालजेन शेर्पा किरण बाबू श्रेष्ठ श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारी रोशनी मेचे खम बहादुर खाती भुवन बहादुर सुनार रुकबिड़ी कोइराला गीता देवकोटा सुरेश आले मगर धर्मेन्द्र पासवान विष्णु बहादुर विश्वकर्मा आ वासुदेव घिमरी भाग लेलनि। विचार विमर्शमे सहभागी होइत ओ सब रोजगारी सृजना गरीबी न्यूनीकरण औद्योगिक पुनरुत्थान कृषि उत्पादन वृद्धि प्रतिभा पलायन रोकबाक दलित समुदायके राज्यके मूल प्रवाहमे आब लगायतके जन अपेक्षा पूरा कर दिस बजेट केन्द्रित हेबाक चाही बतौलनि। राष्ट्रसभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल सभाके दोसर बैठक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति कृषि वन तथा वातावरण पर्यावरण पूर्वाधार विकास गृह ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई परराष्ट्र अर्थ रक्षा परराष्ट्र मंत्रालय तथा राष्ट्रपति के कार्यालय उपराष्ट्रपति के कार्यालय प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय राष्ट्रीय योजना आयोग के सचिवालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक पर विचार विमर्श होबाक जानकारी देलनि। राष्ट्रसभा में आखार 22-23 गते मंत्रालयगत विनियोजन शीर्षक पर उठल प्रश्न के संबंधित मंत्री जवाब देबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। राष्ट्रसभा के दोसर बैठक आखार 19 गते शुक्र दिन 1:15 में बैसत।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाके सभापति रवि लामिछाने उद्योगी व्यवसायीके समस्याप्रति सरकार आ पार्टी दुनू सकारात्मक रहल बतौलनि अछि। वीरगंज उद्योग वाणिज्य महासंघके पदाधिकारी सबसँग आइ काठमाण्डुमे भेल भेटघाट तथा विचार विमर्श कार्यक्रममे सभापति लामिछाने उद्योग आ व्यवसाय बढ़ल त मात्र देशके अर्थतन्त्र सुदृढ होइत जायत बतबैत निजी क्षेत्रसँगके सहकार्य सँगे उद्योग वाणिज्य क्षेत्रके समस्याके व्यावहारिक आ दीर्घकालीन समाधान ताक स्वयंसँ प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। तस्करी नियन्त्रण, राजस्व प्रणाली सुधार आ उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणके विषयमे सम्बन्धित निकायसँग विचार विमर्श आगू बढेबाक जानकारी सेहो देलनि। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 के सांसद बुद्धि प्रसाद पन्तके समन्वयमे सम्पन्न एहि विचार विमर्शमे सीमामे बढल तस्करी, उधार कानून, धनसार दर असन्तुलन, प्रतिबन्धित सामानके आयात, पूर्वाधार विकास लगायत विषयमे बातचीत भेल छल। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा सरकारी प्रवक्ता सब राष्ट्रीय हित के केन्द्र में राखि सूचना प्रवाह करबाक चाही बतौलनि अछि। सिंह दरबार स्थित सूचना तथा संचार मंत्रालय में आयोजित प्रवक्ता संवाद कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा विभिन्न मंत्रालय तथा सरकारी निकाय के प्रवक्ता सब अपन अपन निकाय अंतर्गत सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी में रहल बतौलनि अछि। मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा सार्वजनिक हेबाक वला आधिकारिक सूचना समय में प्रवाह होबय नहीं सकल बतबैत गोप्य रह वाला सूचना अनधिकृत रूप में बाहर होबय के घटना न्यूनीकरण करबाक लेल संवेदनशील सूचना के चोरी रोक आवश्यक सावधानी अपनाल जेबाक चाही पर जोर दिलन। मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा सूचना प्रविधि के युग में कौन सूचना कौन निकाय से प्रवाह करबाक चाही ए विषय में स्पष्टता आवश्यक रहल बतबैत स्वयं कार्यरत निकाय के हानि पहुँचसन सूचना सार्वजनिक करब राष्ट्रीय हित आ उत्तरदायित्व विपरीत रहल बतौलन। कार्यक्रम में सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरिल प्रभावकारी सूचना प्रवाह के लिए सब मंत्रालय तथा संबंधित निकाय बीच समन्वय आवश्यक रहल आ प्रवक्ता सबके लिए सूचना प्रवाह संबंधी स्पष्ट कार्यदिशा हेबाक चाही बतौने छलथि। विशेष अदालत नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल के संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी मुद्दा में तेसर बेर म्याद थप के अनुसंधान करबाक अनुमति देलक अछि। विशेष अदालत के न्यायाधीश सब नारायण प्रसाद पौडेल, हेमंत रावल आ उमेश कोइराला के इजलास से आइ पूर्व अर्थमंत्री पौडेल के थप 6 दिन थुना में राखि अनुसंधान करबाक लेल संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग के अनुमति देलक अछि। विशेष अदालत इससे पहले उपाध्यक्ष पौडेल के संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी मुद्दा में पहिल बेर 7 दिन, दोसर बेर 3 दिन, अखन तेसर बेर 6 दिन थुना में राखि अनुसंधान करबाक अनुमति देलक अछि। उपाध्यक्ष पौडेल के यह अखार 8 गते सुर्खेत से पकड़ के काठमांडू आइन अदालत में उपस्थित कराल गेल छल। हुनका अनुसंधान के लिए न्यायिक हिरासत में राखल गेल छन। बजट संशोधन के मांग करैत मधेश प्रदेश सभा के प्रमुख प्रतिपक्षी दल सब आई सेहो प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध कलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल आ प्रतिपक्षी जनमत पार्टी संयुक्त रूप में विरोध करैत बजट संशोधन नहीं भेल धरि बैठक संचालन होबय नहीं देब कहलाक बाद सभामुख राम आशीष यादव प्रदेश सभा के बैठक अनिश्चित काल के लेल स्थगित कयलनि अछि। एहिसँ पहिने बैठक शुरू होबय संग जनमत पार्टी के प्रदेश सभा के सदस्य संजय कुमार यादव सरकार प्रस्तुत कने बजट विकासमुखी नहीं भ टुकड़ा टुकड़ा योजना में केंद्रित रहल आरोप लगौलन। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रदेश सभा के सदस्य उपेन्द्र महतो बजट वितरण प्रक्रिया पर प्रश्न उठबैत बजट संशोधन हेबाक चाही आ ओहि संबंधी विवाद के छानबीन करबाक लेल संसदीय समिति गठन हेबाक चाही मांग दोहरौलन। ओ बजट के पूर्ण लेखन व संसदीय समिति नहीं बनल धरि बैठक चल नहीं दे बतौलन। प्रतिपक्षी प्रदेश सभा सदस्य सब रोस्टर में उठ के विरोध जारी रखलाक बाद सभामुख राम आशीष यादव प्रदेश सभा बैठक दोसर सूचना प्रकाशित नहीं भेल धरि के लेल स्थगित भेल घोषणा कयने छलथि। सशस्त्र प्रहरी के असय थबनबीक हत्या प्रकरण में जिला अदालत महतरी से जन्मकैद के सजाए पौने मधेश प्रदेश के निलंबित प्रदेश सभा सदस्य अभिराम शर्मा के उच्च अदालत जनकपुर सजाए घटाकर 5 वर्ष कैद करवाक फैसला कलक अछि। उच्च अदालत जनक जिला अदालत के फैसला आंशिक रूप में उलटबैत शर्मा के 5 वर्ष कैद सजाए सुनौलक अछि। इससे पहले सफाई पौने नेकपा एमाले के पूर्व सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ पवन कापड़ के 5 वर्ष कैद सजाए सुनाल गेल छल। करीब 2.5 वर्ष धरि चलल सुनवाई के क्रम में 50वीं पेशी में बुध दिन फैसला सुनाल गेल अछि। इससे पहले विभिन्न कारण से 49टा पेशी स्थगित भेल छल। तत्कालीन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के संसदीय दल के नेता रहल शर्मा जिला अदालत से जन्मकैद के सजा भेटलाक बाद फरार रहित आयल छले। ते पश्चात मधेश प्रदेश सभा हुनका निलंबन क चुकल अछि। जिला अदालत महतरी 2080 अघन 28 गते अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाए सुनौने छल, मुदा उच्च अदालत जनकपुर 3 गोटे के हक में जिला अदालत के फैसला सदर करैत जन्म कैद के सजाए
कायम रखलकैस त 4 गोटेके सजाय घटाक 5 वर्ष कैद सजाय कायम कैलक अछि। उच्च अदालतके फैसला हिसाबे संजय शाह, मोहन ठाकुर, प्रदीप राय के जन्म कैद सजाय यथावत रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत सरकार ऑनलाइन ठगी आ नकली परिचय पत्र के उपयोग कऽ कऽ साइबर अपराध बढ़ के चिंता व्यक्त करैत मेटा के व्हाट्सएप के प्रयोगकर्ता नाम यूजर नेम सुविधा तत्काल लागू नहि करबाक लेल आग्रह कयलक अछि। सरकार इस संबंध में आवश्यक परामर्श पूरा नहि भेल धरि सुविधा सार्वजनिक नहि करबाक लेल पत्र मार्फत अनुरोध कयने भारतीय संचार माध्यम जनौलक अछि। मेटा सोम दिन प्रयोगकर्ता अपन फोन नंबर सार्वजनिक नहि कऽ अलगे प्रयोगकर्ता नाम मार्फत एक दोसर संग संपर्क कर सकबाक नया सुविधा विश्वभर आने के घोषणा कयने छल। गोपनीयता बढ़ेबाक उद्देश्य सँ आने लागल इस सुविधा भारत में ठगी करय वाला समूह नकली परिचय बनाकर प्रयोगकर्ता के ठग सकबाक सरकार के चिंता रहल अछि। इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटा के पठौने पत्र में नया सुविधा के कारण ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, डिजिटल गिरफ्तारी जेहन ठगी या नकली परिचय पत्र के घटना बढ़ सकबाक उल्लेख कयल गेल अछि। मेटा इस सुविधा भारत में अखन शुरू नहीं भेल स्पष्ट कयलक अछि। कंपनी के हिसाबे सार्वजनिक व्यक्तित्व आ प्रमाणित खाता के उपयोगकर्ता नाम पहले ही सुरक्षित राखल गेल अछि, जे नकली परिचय के प्रयोग जोखिम कम करत। संगे प्रयोगकर्ता नाम प्रयोग केने व्हाट्सएप चलावा फोन नंबर अनिवार्य रहबाक आ ठगी रोकब बहुस्तरीय सुरक्षा संयंत्र समावेश कयल गेल कंपनी जनौलक अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संपत्ति शुद्धिकरण, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तृतीय संशोधन विधेयक सहित चार विधेयक प्रतिनिधि सभा से पारित। बर्दिया से सुकुम्बासी को लाल पुर्जा वितरण शुरू। अंतर प्रदेश सार्वजनिक परिवहन का किराया 2% घटाने का परिवहन व्यवस्था विभाग का निर्णय। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले में 18 यूक्रेनी नागरिकों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा अध्यादेश के स्थान पर लाए गए संपत्ति शुद्धिकरण, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण सहित चार अलग अलग विधेयक प्रतिनिधि सभा से पारित हो गए हैं। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने सार्वजनिक खरीद द्वितीय संशोधन विधेयक 2083, संपत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तृतीय संशोधन विधेयक 2083, सहकारी प्रथम संशोधन विधेयक 2083 तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानों से संबंधित कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन विधेयक 2083 को पारित किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय एवं संसदीय मामला मंत्री सोभिता गौतम ने सार्वजनिक खरीद द्वितीय संशोधन विधेयक 2083 को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया। इसी प्रकार अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने धन संशोधन मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तृतीय संशोधन विधेयक 2083 प्रस्तुत किया। वहीं सहकारी प्रथम संशोधन विधेयक 2083 पर चर्चा का उत्तर देते हुए भूमि व्यवस्था मंत्री प्रतिभा रावल ने कहा कि जमाकर्ताओं की बचत वापस दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए

0: सभी पक्षों के सहयोग की अपेक्षा है। इसी प्रकार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानों से संबंधित कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन विधेयक 2083 को स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता ने पारित करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक आषाढ़ 22 सोमवार को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में विनियोजन विधेयक 2083 के अंतर्गत 9 मंत्रालयों के विनियोजन शीर्षकों पर समूहगत चर्चा पूरी हो गई है। चर्चा में भाग लेते हुए सांसदों ने कहा कि बजट का मुख्य ध्यान रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, औद्योगिक पुनरुत्थान, कृषि उत्पादन में वृद्धि, प्रतिभा पलायन रोकने, दलित समुदाय को राज्य की मुख्य धारा में लाने तथा जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने पर होना चाहिए। आज की बैठक में युवा, श्रम एवं रोजगार, सूचना एवं संचार, संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, शिक्षा एवं खेलकूद, स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन, महिला बाल बालिका, लैंगिक एवं यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा, विज्ञान प्रविधि एवं नव प्रवर्तन तथा कानून न्याय एवं संसदीय मामलों से संबंधित विनियोजन शीर्षकों पर चर्चा हुई। इससे पहले राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने देश के समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा द्वारा अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए फीफा के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का प्रयास जारी है। आज की मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णय सार्वजनिक करते हुए सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री पोखरेल ने पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा समस्या के समाधान के लिए फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अधिकारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया जा चुका है। इसी बीच आज की मंत्रिपरिषद बैठक ने गोरखा पत्र संस्थान के महाप्रबंधक पद पर कैलाली के हिकमत बहादुर रावल को नियुक्त करने का निर्णय लिया। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री पोखरेल ने बताया कि बैठक ने सुरक्षण मुद्रण केंद्र के कार्यकारी निदेशक पद पर मोरंग के देवराज ढुंगाना को नियुक्त करने का भी निर्णय किया। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के राष्ट्रीय सदाचार नीति 2083 और राष्ट्रीय विज्ञापन नीति 2083 को स्वीकृति दी। नेपाल पुलिस के 8 अतिरिक्त महानिरीक्षकों AIG का तबादला किया तथा विशिष्ट संरचना संचालन एवं प्रबंधन विकास समिति के रिक्त कार्यकारी निर्देशक पद पर धर्मराज खड़का धनकुटा को नियुक्त करने के सहित अन्य कई निर्णय भी किए। करनाली राजमार्ग के दैलेख सड़क खंड में आज सुबह एक यात्री फोर्स वाहन के करनाली नदी में गिरकर डूब जाने से राहत एवं बचाव कार्य में कठिनाई हो रही है। नदी का जलस्तर बढ़ जाने और वाहन पूरी तरह पानी में डूब जाने के कारण उसे देखा नहीं जा सका, जिससे बचाव अभियान प्रभावित हुआ है। करनाली प्रदेश पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी SSP संतोष सिंह राठौर ने बताया। उनके अनुसार खेत से कालीकोट जा रहा फोर्स वाहन आज सुबह दैलेख के चामुंडा बिंद्राशैनी नगरपालिका 7 स्थित सांगेटाड़ा में करनाली नदी में गिर गया। पुलिस ने बताया कि लगभग 40 वर्षीय एक पुरुष का शव चट्टान में फंसी अवस्था में बरामद किया गया है। मृतकों की पहचान अभी नहीं किया जा सका है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
1: भाउजू दर्शन,
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते भाउजू।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ भाउजू।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् भाउजू।
4: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे, त पनि NTC सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
5: ए हो र,
1: NTC डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
6: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने आज से बर्दिया जिले में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र लाल पुर्जा वितरण अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत बढ़ैया ताल गांव पालिका 4 के 29 भूमिहीन दलित और भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारों को लाल पुर्जा प्रदान किया गया। यातायात व्यवस्था विभाग ने कल से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी के बाद अंतर प्रदेशीय सार्वजनिक और मालवाहक वाहनों का किराया आज से 2% घटा दिया है। विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया कि संशोधित किराया आज से लागू किया गया है। विभाग के अनुसार पिछली बार किराया समायोजन के समय डीजल की औसत कीमत 235.83 रुपए प्रति लीटर थी, जो गत अषाढ़ 17 से घटकर 193.83 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसी आधार पर स्वचालित प्रणाली के तहत नया किराया निर्धारित किया गया है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि प्रवक्ताओं को राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर सूचना का प्रसार करना चाहिए। आज सिंह दरबार स्थित सूचना तथा संचार मंत्रालय में आयोजित प्रवक्ता संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी निकायों के प्रवक्ता अपने अपने संस्थानों की ओर से सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने कहा कि जो आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए वह समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती, जबकि गोपनीय सूचनाएं अनधिकृत रूप से बाहर चली जाती है। उन्होंने संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने से रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने पर जोर दिया। विशेष अदालत ने नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल के खिलाफ धन संशोधन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी बार 6 दिन हिरासत की अवधि बढ़ाकर जांच की अनुमति दी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश नारायण प्रसाद पौड़ेल, हेमंत रावल और उमेश कोयराला की पीठ ने आज पौड़ेल को 6 दिन और न्यायिक हिरासत में रखकर जांच करने की अनुमति धन संशोधन अनुसंधान विभाग को दी है। भगवान बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी में आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन शुरू हो गया है। बौद्ध धर्म, संस्कृति और धरोहर के संरक्षण तथा सतत पर्यटन संवर्धन पर केंद्रित इस सम्मेलन में नेपाल, भारत, चीन, श्रीलंका और फिनलैंड के बौद्ध विद्वान, धरोहर विशेषज्ञ, शोधकर्ता और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने गुरुवार तड़के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 90 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वह हमला हाल के महीनों में कीव पर हुए सबसे भीषण हमलों में से एक माना जा रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार हमले में राजधानी के कई आवासीय इलाकों, बहुमंजिला इमारतों, एक होटल, अनुसंधान संस्थान, एम्बुलेंस केंद्र तथा अन्य नागरिक ढांचों को नुकसान पहुंचा है। एक 9 मंजिला आवासीय इमारत का हिस्सा ढह जाने से कई लोग मलबे में फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए राहत एवं बचाव अभियान जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं और घायलों को सहायता पहुंचाई जा रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की अपील की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण, तृतीय संशोधन विधेयक सहित चार विधेयक प्रतिनिधि सभा से पारित। बर्दिया से सुकुम्बासी को लाल पुर्जा वितरण शुरू। अंतर प्रदेश सार्वजनिक परिवहन का किराया 2% घटाने का परिवहन व्यवस्था विभाग का निर्णय। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले में 18 यूक्रेनी नागरिकों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
3: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
6: *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
7: झण्डु आयुर्वेद, सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
8: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
7: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
8: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
7: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
9: के तपाईँ खोला नदीनाला छेउछाउमा बसोबास गर्नुहुन्छ? होसियार, बर्सातको समयमा खोला नदीमा पानीको सतह बढेमा तुरुन्तै अग्लो र सुरक्षित स्थानमा जानुहोस्।
10: विपद बाजा बजाएर आउँदैन, त्यसैले बाढी पहिरोको जोखिम हुने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण कागजात र आपतकालीन सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्।
9: हल्लाको पछिन्न लागि आधिकारिक सूचना र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस्।
10: रेडियो नेपालद्वारा जनहितका लागि।
11: आफन्तसँगको भेट त सधैँ हुन्छ,
10: तर मीडिया मार्फतको भेटको मजा नै अर्कै।
11: के तपाईँ आफ्ना आफन्तहरूलाई केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो आवाज मार्फत? यदि चाहनुहुन्छ भने मेल गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम फ्यान बक्समा।
10: प्रत्येक शुक्रबार दिउँसो 1:20 देखि करिब 2 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ अनिता आचार्यको साथमा कार्यक्रम फ्यान बक्स।
11: कार्यक्रम फ्यान बक्स।
12: त्यो बेला धन्न मैले बेलैमा थाहा पाएछु, जसले वास्तै नगरेर ख्यालख्याल सम्झे तिनको अकालमै ज्यान गयो, धन पनि गयो। अलिअलि पानी त परे आउने भने त्यत्रो क्षति भयो। उफ, त्यस्तो त कहिल्यै नहोस्।
13: मनसुनमा नसोचेको बाढी पहिरो, चट्याङ, डुबान जस्ता अनेक जोखिम हुन सक्छन्, तर सानो होसियारीले ठुलो क्षति कम गर्छ। समय छँदै मनसुनलाई बुझिराखौँ।
14: मनसुनमा हुन सक्ने विपदबारे चनाखो बनाउने प्रयासमा रेडियो नेपालबाट हरेक हप्ताको शुक्रबार बिहान 7:40 कार्यक्रम बुझौन।
12: बर्खाको बोली सुरक्षित भोली, कार्यक्रम बुझौन।

0: जिसकी सोच में खुददारी की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है, जिसकी सोच में खुददारी की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। इन पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है रेडियो नेपाल की प्रस्तुति और आप सबके प्यार व मिठास भरे हिंदी सदाबहार गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में, और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र
1: और मैं रमिता यादव,
0: और तकनीकी तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं प्रावधिक मित्र पुष्प रत्न वज्राचार्य जी।
1: जी हाँ दोस्तों, मीडियम वे 576, 648, 694, 792, 810 और 1143 किलो हर्ज के साथ साथ FM बैंड 98, 100, 103 मेगा हर्ज पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np, www.onlineradionepal.gov.np और www.psbnepal.gov.np पर एक साथ आप मधुरिमा कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं और इसे आप रेडियो नेपाल के मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं।
0: और इसके अलावा बहुत से मित्र मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव देख भी रहे हैं, और जो नहीं देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि अगर आप ही देखना चाहते हैं हमें लाइव, तो मधुरिमा कार्यक्रम के फेसबुक पेज मधुरिमा हिंदी को लाइक और फॉलो करें ताकि कार्यक्रम जैसे ही शुरू हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप कार्यक्रम के लाइव वीडियो के साथ जुड़ जाएं और अपने मन की बात तत्काल लाइव ही अपने कमेंट के जरिए साझा कर पाएं, और किसी कारणवश तत्काल न भी देख पाएं तो बाद में भी इसे आप मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज पर देख सकेंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी नए दोस्त इस कार्यक्रम से जुड़ पाएँ और अपनी बातें रख पाएँ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है प्रतिक्रिया के तौर पर हमें कमेंट में बता सकते हैं। हर गुरुवार रात 10 बजे के हिंदी समाचार के तुरंत बाद करीब 50 मिनटों के इस कार्यक्रम में आज है बारी आपके प्यार और मिठास भरे फोन कॉल्स की,
0: और कार्यक्रम में लाइव बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो के नंबर हैं 01421 और 01411736। और अगर नेपाल से बाहर के श्रोता हैं तो उन्हें डायल करना होगा +97714211721 या 4211736।
1: जी तो दोस्तों, कार्यक्रम में फोन करें और इस कार्यक्रम को और भी हसीन खूबसूरत बनाएं, जिसके लिए आपको नंबर डायल करना होगा 01411721 और 01411736।
0: जी अब हम कार्यक्रम का सांगीतिक आगाज करें रमिता जी।
1: जी बिल्कुल,
0: यदि आप हमें आदेश करें तो संगीत का हम श्री गणेश करें।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: राम कृपाल ठाकुर जी हैं जलेश्वर बारा से, और उन्होंने हमेशा वो हमें लिबर्टी देते हैं कि अपने पसंद से आप गाना सुनाएं।
1: जी।
0: तो उनके लिए हमने ये गाना चुना है, वो गाना कौन सा है वो आप उपकरण से सुनेंगे ही, तो ये गाना आपको कैसा लगता है आप भी कमेंट के जरिए प्रतिक्रिया जरूर दें। प्रस्तुत है ये गीत।

0: ये गाना आपने सुना येसुदास और हेमलता की आवाज़ों में। इसके गीतकार और संगीतकार दोनों ही रविंद्र जैन हैं। और ये गाना आपने सुना फिल्म चित्तचोर से, जो कि सन 1976 में रिलीज हुई।
1: और इसी बीच कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो, नमस्ते।
0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुभ
0: रात्रि जी। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? ओहो, राम पुकार रहा है जी।
2: राम पुकार रहा है जी।
0: कैसे हैं राय जी आप?
2: जी ठीक है, आप लोग की कृपा से, दुआ से बहुत अच्छे हैं।
0: चलिए, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं, हमारी दुआएं हैं और पशुपतिनाथ का आशीर्वाद है जी।
2: जी
0: और क्या है वहाँ के हाल खबर रोड थट के?
2: हाल खबर तो ठीक है, गर्मी बहुत है, पानी आज से 3 रोज पहले थोड़ा थोड़ा पड़ा था, नहीं है,
0: बारिश नहीं हो रही। ये तरह की अभी की समस्या है, खेती पाती में समस्या हो रही है ना?
2: खेती पाती में अब पानी पड़ेगा तो अगले हफ्ता से शुरू हो जाएगा हम लोग का खेती।
0: चलिए, ये बीज बीजन सब तैयार है?
2: ये बीज तैयार है।
0: चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बारिश हो वहाँ पे। और कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे?
2: गाना तो अब हम आप लोगों को दे रहे हैं, कोई भक्ति पक्ष का भजन अगले बार को हो।
0: जी जरूर,
2: राम कृपाल ठाकुर जी की मेरे तरफ से प्रणाम है, नमस्कार है। वो फोन नहीं कर रहे हैं, फोन करने का थोड़ा कृपा प्रदान करे, उनका गाना बड़ा अच्छा लगा हमको।
0: अच्छा, चलिए,
1: सुन रहे होंगे वो भी।
0: बिल्कुल सुन रहे होंगे। और आप दोनों लगभग वैसे ही होंगे, लगभग एक ही उम्र के होंगे मेरे ख्याल से।
2: एक ही उम्र के, एक बरस तो जीते।
0: अच्छा, वो भी आपको पता लगा लिया आपने?
1: बातचीत होती है इनकी फोन पर।
0: अच्छा, फोन पर बातचीत होती
2: है, वो 26 साल के है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, आप दोनों स्वस्थ रहें। और हम आप दोनों ही हमारे चहेते श्रोता हैं और बड़ा मजा आता है आप लोगों से बातचीत करके। और एक लगता है कि कोई कहीं से कुछ आशीर्वाद तो मिल रहा है हमें, ऐसा महसूस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुकार राय जी। और ये हैं हमारे, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे बुजुर्ग श्रोता हमारे दो जो हैं, राम कृपाल ठाकुर जी और राम, दोनों का नाम राम से ही शुरू होता है। देखिए, राम पुकार राय जी, बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ बातचीत करके। और सबसे मजा ये आता है ये सोचकर कि ये हमें सुनते हैं और प्यार से सुनते हैं। और अब हम फिर से गाने की ओर चलना चाहेंगे। वैद्यनाथ चौधरी जी हैं परस्टोकी सुनसरी से, और ये परस्टोकी एक परस्टोक का है, याद है ना
1: जी।
0: तो वैद्यनाथ चौधरी जी हैं परस्टोकी सुनसरी से, और उन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी पिछली फोन वाली श्रृंखला के दिन। उनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म अपना देश से, जो कि सन 1972 में रिलीज हुई थी। और इस गीत में आवाज़ है लता मंगेशकर की, और इस गीत के गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार है आरडी वर्मन। और इस गीत की फरमाइश वैद्यनाथ चौधरी जी परस्टो की सुनसरी के रहने वाले हैं, उन्होंने की थी।
1: और फिर से कुछ होता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुर में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
2: कल मेरा फोन टनकते टनकते भैया और दीदी को कहना गुड्डू बानिया और श्रोताओं को राम कृपाल ठाकुर जी जाम कृपाल फुकार जी को कहना नमस्ते नमस्ते।
1: क्या बात है
0: गुड्डू जी, कैसे हैं आप?
2: अरे दीदी हम तो बड़े अच्छे हैं, काठमांडू में कैसे बारिश हो रही है इसको बताइए आप।
1: यहाँ पे बारिश होती है, कल भी हुई थी आज भी हुई है और यहाँ पे बारिश हो ही जाती है लगभग।
2: हम तो गर्मी से मर रहे हैं।
1: हाँ तरह की थोड़ी सी समस्या है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि वहाँ पे बारिश हो, पशुपतिनाथ सुने और वहाँ भी कुछ बारिश करवाएं जी। और कुछ सुनाना चाहेंगे गुड्डू जी?
2: भैया जी सुनाना तो बहुत कुछ है, खाना तो बहुत कुछ है
1: जी। इरशाद सुनाएं।
2: उबर बाकी है, पूरी रात बाकी है।
1: आए है क्या
2: मुलाकात करने की पूरी रात बाकी।
1: वाह बहुत बढ़िया जी, कुछ सुनाए कुछ। और
2: भैया जी हमारे पास चुटकुला सुना दे रहा हूँ।
1: हाँ हाँ सुनाइए।
0: हाँ, बिल्कुल सुना सकते हैं।
2: चुटकुला है कि एक दोस्त और दूसरे दोस्त मिलकर के सुबह में टहल रहे थे। टहलने के बाद उनको रास्ते में खरगोश मिल गया।
1: अच्छा,
2: जिसको नेपाली में खड़ायो कहते हैं।
1: जी खड़ायो कहते हैं जी, बिल्कुल।
2: तो जब खड़ायो मिल गया तो जानते हैं, तो एक दोस्त ने देखा तो बहुत गोरा था, सुंदर था, लाल लाल आंखें थी, सुंदर चेहरा था, सुंदर मुहा था। दूसरे दोस्त ने बताया यार कि बहुत सुंदर है लेकिन लेकिन एक खड़ायो तो बहुत बढ़िया है लेकिन इसकी आंख में कालिक नहीं है, काजल नहीं है इसकी आंख में।
1: अच्छा,
2: दूसरे दोस्त ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि इसकी माँ ने इसको काजल लगाना भूल गया क्या?
1: क्या
2: इसकी माँ ने इसकी आंखों में काजल नहीं लगाया इसीलिए इसकी आंखें लाल है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: और कोई गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
2: हाँ दीदी, दीदी रंता जी नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, आपने तभी नमस्ते किया था तो
2: गाने की फरमाइश करूंगा
1: जी। कौन सा?
2: लंबू तंबू में और लंबू तंबू में बंबू लगाए बैठे,
1: लंबू
2: तंबू में बंबू लगाए बैठे। अब अमृता से की,
1: चलिए इस गाने को हम जरूर सुनवाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू बानिया जी। और ये थे गुड्डू बानिया जी नवलपरासी से
0: जी।
1: और हम फिर से गाने की ओर चलना चाहेंगे। सोनी झा जी हैं बाफल काठमांडू से, उन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी। अब सुनते हैं उनकी फरमाइश पर, ये बहुत ही मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है, सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म दीवाना से, जो कि सन 1992 में रिलीज हुई थी, और इस गीत में आवाजें हैं कुमार सानू, साधना सरगम की, और इस गीत के गीतकार हैं समीर और संगीतकार है नदीम श्रवण, और इस गीत की फरमाइश सुनी झाजी बाफल की रहने वाली हैं, उन्होंने की थी।
1: और कुछ होता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुमेह में, कौन बोल रहे हैं कहाँ से?
2: दादू नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं कहाँ से? दिल बहादुर चौधरी, आपने पिछली श्रृंखला में ही फोन किया था, बातचीत नहीं हो पाई थी ठीक से, है ना?
2: हाजिर हाजिर
1: जी, कैसे हैं चौधरी जी?
0: सुरखेत से है ना?
2: हाँ तो ठीक बा दादू,
1: ठीक बा। अच्छा
0: ठीक है, और क्या पेश कर रहे हैं कार्यक्रम में, क्या सुनाना चाहते हैं आज?
1: हेलो, और पिछली बार भी ऐसे ही हुआ, तो वो जानबूझ के काटते हैं या पता नहीं प्रारंभिक त्रुटि की वजह से कट जाता है
0: उन्हें, मुझे लगता है कि हिंदी बोलने में कठिनाई हो रही है इसलिए तो, मुझे लगता है कि कट कर जाते हैं या बोल नहीं पाते, रिप्लाई नहीं कर पाते, ये होता होगा मुझे लगता
1: हो
0: है।
1: सकता है। तो दिल जी ऐसा ना करें, आप तो दिल वाले हैं, नाम ही आपका दिल है, तो आप नेपाली में बोले, भोजपुरी में बोले, जिस भाषा में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोकन हिंदी बोले कोई दिक्कत नहीं है
0: जी।
1: और फिर से कुछ होता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुमेह में, कॉल बोलने कहाँ से?
3: नमस्कार
1: साहब। नमस्कार जी।
0: नमस्कार, नमस्कार।
1: कौन बोल रहे कहाँ से?
3: संजीव दहाल बोल रहा हूँ, बख्तापुर बालकोट से।
1: संजीव दहाल
3: हजूर,
1: कैसे हैं संजीव जी?
3: ठीक ही हूँ सर।
1: ठीक है, भक्तपुर के क्या हाल चाल है? बालकोट के,
3: बालकोट का भी ठीक ही, हल्का हल्का बारिश हुआ।
1: अच्छा
0: जी,
3: आज ठंडा मौसम हो रहा है।
1: चलिए, उतनी गर्मी नहीं लग रही है, थोड़ी बहुत राहत मिली है,
0: बहुत दिनों से गर्मी भी थी
1: जी। और क्या पेश कर रहे हैं? देखिए, आपको अगर पता हो तो हमारे कार्यक्रम का क्या है कि हम ही सिर्फ संचालक नहीं है, हमारे श्रोता भी संचालक ही होते हैं और सभी प्रस्तोता ही होते हैं, तो कुछ ना कुछ श्रोताओं को भी इसमें अपनी कला प्रस्तुत करनी पड़ती है, शायरी हो, कविता हो, या नेपाली हो, हिंदी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी गुनगुना सकते हैं। जी इरशाद सुनाए।
3: मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई।
1: क्या बात है, ऐसे कोई बात हुई है संजीव जी?
0: बात बड़ी।
1: अच्छा, कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे?
3: राजा मूवी का।
1: कौन सा?
3: राजा मूवी का। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, फिर से कहना।
1: क्या बात है, बड़ी मेलोडियस फरमाइश है आपकी, शौक है आपके, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, और ऐसे ही कार्यक्रम सुनते रहे और फोन भी करते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: ओके, गुड नाइट।
1: और गुड नाइट। और ये थे संजीव दहाल जी, और मेरे ख्याल से पहली बार इन्होंने फोन किया था, बड़ी खुशी होती है जब कोई पहली बार कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं तो। और फिर से हम गाने की ओर चलना चाहेंगे, और इस गाने की फरमाइश डॉक्टर राय थारू जी ने नवल परासी से की थी, और ये बहुत ही बढ़िया गाना है, सुनते हैं ये गीत।

0: पकड़े जाएंगे।
1: पकड़े जाने से पहले तो हम भाग जाएंगे, पकड़े
2: जाने से। और ये गाना आपने सुना फिल्म क्रोधी से, जो कि सन 1981 में रिलीज हुई थी, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ चुका है, उनके साथ बहुत संक्षिप्त में बातचीत कर पाएंगे क्योंकि कार्यक्रम का समय बिल्कुल अंत में आ चुका है। तो बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुबन में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
3: जय श्री राम।
2: जय श्री राम। वाह क्या बेस है। कौन बोल रहे कहाँ से?
3: हम नेपाल से नहीं है, फिर भी हम भगवान शिव के भक्त है और हम अभी नेपाल से बोल रहे हैं।
2: अच्छा, आप सिक्किम से है। अपना शुभ नाम बताएं।
3: आपके नाम है? हमके नाम सुंदर पौडेल।
2: सुंदर पौडेल, बड़ी बेसफुल आवाज है आपकी, बड़ी भारी आवाज है आपकी, बहुत सुन के मजा आया।
3: बहुत अच्छा लग गई। और आपका आता है क्या? ठीक है
2: जी, बहुत बढ़िया
4: है, ठीक है।
2: और कुछ पेश करेंगे कार्यक्रम में?
4: और ये अभी नेपाल आए
3: हैं। मैम हम कुछ एक क्वेश्चन सुनना पड़ेगा इस जनता से नेपाल के।
2: जी जी सुनाए, उस पूछिए।
3: क्या सुनाना है यार, और बहुत से क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन सुनाना है।
2: जी सुनाइए।
3: तो हमके कपड़े में मजा का है ना, तो लगाना है तुम्हें कपड़ा में, पुमा लिखा है ना।
2: हाँ हाँ,
3: पुमा के फुल फॉर्म बताया हम
2: किसका? एक बार नेपाली में बताएं, आपकी आवाज मतलब ठीक से समझ नहीं पाए।
3: इंडिया से आ गई था वो कपड़ा, और उसके फुल फॉर्म हमको जानकारी कराना है ना सब करना, तो और दोस्त सुनाना है, दोस्त सुनाना है।
2: जी जी, कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे?
3: गाना?
2: जी
3: गाना नहीं, हम नेपाली में बात कर सकता है गाना?
2: बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, आप नेपाली में बात करें।
3: ये गाना सुना था तो
2: कौन चाहिए?
3: नेपाली गाना गाता है हम, हिंदी गाना सुनाता है आपको।
2: हाँ हाँ सुनाइए प्लीज।
3: फुल्टी आईदू तो ए नजीक आईदू तो, ए नजीक आईदू तो, ए नजीक आईदू तो,
2: क्या बात है।
3: झली को तिम्रो याद अली को हिमाल मन्दानी, ये हमारा फरमाइश है
2: जी।
3: और दूसरा हम क्या सुनना कि अब सुनाना पड़ेगा ना, अब उसको नहीं
2: कौन सा सुनना चाहेंगे,
3: सॉन्ग करना पड़ेगा उसको लिए चाहे।
2: हाँ
3: हाँ, क्या यार तेरे नाम की,
2: तेरे नाम का कौन सा टाइटल सॉन्ग? जी बिल्कुल, चलिए हम जरूर सुन पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए सुंदर जी, सुंदर पौडेल जी।
3: सुंदर पौडेल,
2: सुंदर पौडेल जी,
3: माय नेम इज सुंदर पौडेल फ्रॉम पर्वत बोलता है।
2: अच्छा अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे सुंदर पौडेल जी। अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं, लेकिन एक गाना हम सुनेंगे जरूर, और इस गाने की फरमाइश वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी ने की है बरदंगा मोरंग से, जिगर फिल्म से ये गीत है, सन 1992 में रिलीज हुई थी। पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ों में ये गाना हम सुनेंगे। इसके गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलेंद्र। और इसी गाने को रखते हुए आज के कार्यक्रम से विदा हम लेंगे, लेकिन जाने से पहले हम कहना चाहते हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए जरूर दें, साथ ही अपने पत्र में शेर व शायरी, कविता, गजल, जोक्स आदि जरूर शामिल करें। हमारा पता है कार्यक्रम मधुरिमा, रेडियो नेपाल, सिंह दरबार, काठमांडू। हमारा पोस्टबॉक्स नंबर 634, ईमेल पता madhurimahindi@gmail.com। साथ ही फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी बातें इस कार्यक्रम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.facebook.com/madhurima-hindi।